0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।

सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुन वालों आज शुक्रवार का दिन है, 3 जुलाई का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुन वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुन वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सभी इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है और रेडियो SBS का एप नंबर 0302266611। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी आप सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट के जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन के जरिए आप ऐप भी कर सकते हैं रेडियो SBS का ऐप पर। उसके साथ हमारा प्रोग्राम सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी सुनाई देता है। अपना इंटरनेट रेडियो पर जरूर आप तलाश कीजिए रेडियो SBS। और हॉलैंड देश के बीच में मिडल नीदरलैंड और दूर दूर शहरों में और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में और दूर दूर शहरों में ये प्रोग्राम DAB प्लस रेडियो के जरिए अपना मोटरकार में अपना घरों में आप सुन सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। यहां से ये प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और भजन यात्रा प्रोग्राम बस आरंभ किया जा रहा है वही सुंदर भजन के साथ। सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS की सरिये पेश की गई सुबह सुबह लो सियु का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। हमारी सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है प्रोग्राम भजन यात्रा में, जो हर सुबह आप सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है। शुक्रवार का दिन है, 3 जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और घड़ी की ओर देखा जाए 7:00 प्रोग्राम में 12 मिनट व्यतीत हो चुका है। शुक्रवार का दिन माता जी का दिन है, तो चले यहां से प्रोग्राम में एक सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों के लिए।

आप सभी सुनने वालों को एक खूबसूरत और सुहाना दिन बस पेश किया जा रहा है। उसी सुनने वालों है प्रोग्राम भजन यात्रा सुनते हैं, सभी को स्वागत किया जा रहा है, वेलकम। हमारा आज के प्रोग्राम में हरिओम शरण जी की आवाज में एक सुंदर भजन पेश होगा और ये सुंदर भजन हमारे एक सुनने वालों ने गुजारिश किया है भजन यात्रा के प्रोग्राम में पेश करने के लिए। कल एक सुनने वालों मुझे रेडियो SBS का ऐप के जरिए गुजारिश किया, निवेदन किया ये भजन यात्रा प्रोग्राम में पेश करने के लिए, और वो भी आलकमार शहर की एक रहने वाली है। तो मैंने सोचा चले आज के प्रोग्राम में वो सुंदर भजन को हम पेश करें, हरिओम शरण जी की आवाज में चले मिलकर सुनते हैं।

हरिओम शरण जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आसरो उम्मीद है सुनकर और काफी पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl और आपको मालूम होना चाहिए शहर उत्तराखंड से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है और चले प्रोग्राम भजन यात्रा में हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन महेंद्र कपूर जी की आवाज में।

और रेडियो SBS की जरिए अति सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं एक सुंदर सा राम जी का भजन की ओर, जो आज की शुक्रवार की खास भजन यात्रा के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

राम जी का भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में शुक्रवार है 3 जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की सरिया और प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। हम देख रहे हैं उसी सुनने वालों बस दुनिया की कोने कोने में देश विदेश में भी काफी सुनने वालों बस प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं प्रोग्राम भजन यात्रा जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में श्री महालक्ष्मी चालीसा बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, उसके बाद आरती भजन पेश किया जाएगी अनुराधा पोटवल और नितिन मुकेश की आवाज में। ये सुंदर चालीसा बस पेश किया जा रहा है।

अनुराधापुर और नितिन मुकेश की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई सुंदर सा श्री महालक्ष्मी चालीसा भी आपने सुना। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में महेंद्र कपूर जी की आवाज में आरती भजन पेश किया जा रहा है और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले है, काम करने वाले है, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए और सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

ये गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। ऐलान फिल्म का नाम होगा आपकी बार के और सुनिधि चौहान की आवाज में ये खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है।

फिल्म ऐलान का गीत भी इसकी गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में दिल में हलचल रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये नाना बस प्रोग्राम में पेश की गई शिल्पा राव की आवाज में अभी आपने सुना सरोग मीठे सुनकर और बेहद पसंद किया है। चलिए गाना शान की आवाज में आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना शान की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई, आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश हुआ है।

और रेडियो SBS के जरिए नीरज और श्रेया घोषाल की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। और रेडियो SBS की जरिए शुक्रवार का दिन है, बाहर की ओर देखा जाए धूप निकला हुआ है और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप तक पेश किया जा रहा है। हमारा प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं रोटरडम और देन हाग के आसपास की शहरों में, रोटरडम देन हाग और आसपास की शहरों में ये प्रोग्राम देया बे प्लस रेडियो के जरिए भी पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में आपकी बार ये काफी प्यार भरी गाना।

0: एक बड़ी ही खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई है। तुमको सिर्फ हमसे प्यार है वो नंबर आज की सुबह के प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों के लिए। हमारे बहुत सी सुनने वालों है जो रेडियो SBS का ऐप पर जोड़ तोड़ से ऐप कर रहे हैं, खुद मोर्ख कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, गर्मा गर्म कॉफी भी भेजते रहते हैं। सभी को वेलकम कहा जा रहा है। और हमारी बहुत सी सुनने वालों है जो पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम को इंतजार कर रहे हैं, तो अभी तकरीबन 9 बजे से जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: Radio SBS 24 hours with the best music.
0: चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर।

रहे हैं इस प्रोग्राम को जरूर आप सुनते ही रहना रोजाना। उन सभी के लिए बस पेश किया जा रहा है जो पुरानी नख में काफी पसंद करते हैं।

जब भी ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है तो सभी सुनने वाले होते हैं जो गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ ये प्रोग्राम सुनते हैं, और हमेशा सुबह के वक्त तो गर्मा गर्म कॉफी या चाय होना चाहिए। तो आप सभी के लिए रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से भी गर्मा गर्म कॉफी चाय पेश किया जा रहा है। चले पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। सबक फिल्म का नाम होगा, 1961 का फिल्म, का फिल्म, मोहम्मद रफी एंड लता।

सबक फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश किए गए, खासतौर पर मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में, लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किए गए। आप सभी सुनने वालों की सेवा में, सभी सुनने वालों जो स्टूडियो की ओर तार किया है और रेडियो वेस्ट भी इसका ऐप पर ऐप किया है, ऑनलाइन देश से देश विदेश से सभी को हम शुक्रिया धन्यवाद कहना चाहेंगे। शुभ दिन पेश किया जा रहा है। इस वक्त बाहर की ओर हम देखते हैं तो धूप ही धूप निकला हुआ है। मौसम आज का खूबसूरत सुहाना मौसम, धूप और झोरा मौसम होगा। वैसे आने वाले सप्ताह देश के अंदर में फिर से गर्मी सा मौसम आने वाले है। टेम्परेचर आने वाले सप्ताह कहीं कहीं 30 डिग्री दर्ज खराड़ बस होने वाले है। चले प्रोग्राम में पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में किशोर कुमार, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना, फिल्म ये वादा रहा उसी फिल्म से ये गीत पेश किया जा रहा है किशोर कुमार की आवाज में। और गाना का बोल है ऐसा कभी हुआ नहीं।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश की गई फिल्म ये वादा रहा ऐसा कभी हुआ नहीं और जो भी हुआ तो खूब हुआ। खूबसूरत गीत किशोर कुमार की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। विजिटर की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। चले प्रोग्राम में महेंद्र कपूर के आवाज में गाना पेश किया जा रहा है प्यार वो ये रात फिर ना आएगी। 1965 का फिल्म 1965 का फिल्म महेंद्र कपूर।

गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। इसी तरह से आपने सुना ये रात फिर न आएगी, उसी फिल्म का गाना महेंद्र कपूर जी की आवाज में अभी आपने सुना। ये काफी पुरानी फिल्म का गीत जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। चले गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और सुनने वालों इस वक्त प्रोग्राम सुनते हैं और खूबसूरत नगमे बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। आशा भोसले एंड मोहम्मद रफी। हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम 10 लाख। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा।

मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में फिल्म 10 लाख, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। तो चले प्रोग्राम में ऐसा ही एक गाना और है, किस्मत का खेल निराला मोरे भैया, एक फूल दो माली फिल्म का नाम। रवि की आवाज में आप सुनते ही रहना।

रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। एक काफी पॉपुलर प्रोग्राम जो दुनिया के कोने कोने में सुन वालों बस हर सुबह इंतजार कर रहे हैं, यानी कि रोजाना इंतजार कर रहे हैं और प्रोग्राम को सुनते है।

चलिए प्रोग्राम में एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम घर, उसी फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज में आप सुनेंगे प्रोग्राम में आपकी बार, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। और ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में मांग करने वाली है माला बाबूलाल, यूत्रेक्ट शहर की रहने वाली माला बाबूलाल। ये गाना आज की प्रोग्राम में सुनना चाहते हैं, पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में, तो चले मिलकर सुनते हैं सॉन्ग बाय किशोर कुमार।

कुमार, द मैन विद एवरग्रीन वॉइस किशोर कुमार की आवाज में फिल्म घर का गीत पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और खास तौर पर ये गाना को मांग करने वाली थी उत्तराखंड शहर की रहने वाली माला बाबूलाल। असरों मीठे गाना आपने सुना और काफी पसंद किया। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम के बारे में जरूर एक हर एक को बस खबर करते ही रहना। हर सुबह ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों के लिए पेश किया जा रहा है और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो पुरानी नगमे काफी पसंद करते हैं। हमारा प्रोग्राम और पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम हमेशा भी सुनते हैं इंडिया भारत देश नोएडा में, खास तौर पर अरुणेश। और अरुणेश भी इस वक्त हमारा प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, गाना के बारे में हमेशा इन्फॉर्मेशन भी देते रहते हैं। किसका संगीत, किसने लिखा है गाना को, कौन संगीत तैयार किया है, हर एक इन्फॉर्मेशन बस देते रहते हैं और वो भी इंडिया भारत देश नोएडा से अरुणेश। और अरुणेश आज की प्रोग्राम में एक खूबसूरत गाना मांग किया है लता जी की आवाज में, बाहरों की मंजिल फिल्म का नाम।

भास्कर की आवाज में ये गाना पेश की गई बाहरों की मंजिल 1968 का फिल्म 1968 का फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता जी की आवाज में और मांग करने वाले था आज की प्रोग्राम में इंडिया भारत देश नोएडा के रहने वाला अरुणेश की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई असरों में थे अपने मांगी हुई गाना आपने सुना और काफी पसंद किया रेडियो SBS की सर ये जो पेश की गई है शुभ दिन पेश किया जा रहा है और अभी से एक खूबसूरत और सुहाना वीकेंड भी पेश किया जा रहा है तेरा मिनट पैठीट हो चुका है सुबह सर है 9:00 और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है देनहक शहर के अंदर में विनोद भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त जहां पर नौकरी कर रहे हैं काम कर रहे हैं वहां पर सुनते हैं और खास तौर पर खबर किया है कि पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम कभी मिस नहीं करते हैं हमेशा और हमेशा सुनते हैं तो आज के प्रोग्राम में माइटी मुकेश की आवाज में गाना मांग किया है और ये फिल्म भी 1968 का फिल्म है 1968 का फिल्म का नाम

फिल्म का गीत भी इसकी गई है, द माइटी मुकेश की आवाज में। तनहा शहर का रहने वाला विनोद का खास मांगी हुई गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई है। काफी खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है जो विनोद ने मांग किया, तनहा शहर का रहने वाला। शूटिंग पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जो है पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 2302-62-66-11। स्टूडियो के अंदर तार आते रहते हैं, एप भी जोर तोड़ से अंदर आते हैं, लेकिन तार लेने से पहले गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं और फिल्म महबूब, मेरे महबूब, उसी फिल्म का गाना आप सुनेंगे जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। और गाना को मांग करने वाला है मॉरिशस से दुशन जिंगरे गाना मांग किया है आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए और खास तौर पर स्पेशल इंडिया भारत देश नोएडा के रहने वाले परिवार अरुणेश के लिए ये गाना भी पेश कर रहे हैं।

महबूब फिल्म का गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई, खासतौर पर मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने सुना। और गाना मांग करने वाला था मॉरिशियस का रहने वाला दुशन जिंगरे, ये गाना मांग किया आप सभी सुनने वालों के लिए, और खासतौर पर इंडिया भारत देश नोएडा के रहने वाले परिवार अरुणेश के लिए ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है दुष्यंत और रेडियो SBS का प्रोग्राम मॉरिशियस में, जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हम आपको ले चलेंगे डेनहाग शहर की ओर, और डेनहाग शहर की रहने वाली कमला एक गाना मांग किया है सुबेर सेन और लता जी की आवाज में, छोटी बहन फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

तेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है। मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना पेश की गए। साथी फिल्म का नाम 1968 का खास फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में देहरादून शहर की रहने वाली सिंथिया सुक्खू ये खास गाना स्पेशल अपने प्यारा प्यारा हैंग के लिए बड़ी प्यार के साथ।

सुबह की ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। इस प्रोग्राम में सिर्फ पुरानी नगमे, हाँ पुरानी नगमे बस पेश किया जा रहा है। इस तरह से ये गाना लता जी की आवाज में जो अगली बार आप सुनेंगे, और ये खास गाना रोटरडम शहर की रहने वाली गा दिया है रिया। रिया पहली बार हमारा रेडियो SBS का स्टूडियो में तार किया है रोटरडम शहर से। देया बे प्लस रेडियो की सर ये प्रोग्राम रोटरडम में सुनते हैं और मांग किया है ये गाना।

लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। असरों मीठे गाना आप सभी ने सुना, खास तौर पर रोटरडम शहर की रहने वाली देखा जाए रिया की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई रिया आसरो बीट है। अपना मांगी हुई गाना सुना और काफी पसंद किया है। रेडियो SBS का स्टूडियो की ओर तार करने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ दिन पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना। सुनवालो रोटरडम शहर के अंदर में बहुत सी सुनवालो होते हैं जो रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनते हैं। स्टूडियो की ओर भी डार कर रहे ना सिर्फ रोटरडम में लेकिन देनहाग शहर से भी काफी सुनवालो हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और स्टूडियो में डार कर रहे हैं, गाना को मांग कर रहे हैं। सुनवालो होते हैं जो इंटरनेट की सहारे प्रोग्राम सुनते हैं लेकिन इन दिनों ज्यादा लोग DAB प्लस रेडियो द्वारा प्रोग्राम को सुनते हैं। प्रोविंसी साउथ होलैंड में ये प्रोग्राम DAB के जरिए भी सुनाई देता है और जहां तक हमें मालूम है कि इसी महीना में रोटरडम वालहाफन के सेंट मस्क पर एक बड़ा DAB सेंडर रखा जाएगी रेडियो SBS के लिए ताकि देनहाग रोटरडम शहर के अंदर में बिल्कुल साफ सुंदर रूप में ये आवाज सुनाई दे DAB प्लस द्वारा। और न सिर्फ देनहाग रोटरडम में, वहां पर तो ये प्रोग्राम सुनाई देता है लेकिन दूर दूर शहरों तक ये प्रोग्राम सुनाई देगा। तो मतलब होते हैं इसी महीना में एक बड़ा सेंडर DAB सेंडर रखा जाएगी और वो भी रोटरडम वालहाफन के सेंट मस्ट में।

सुनने वालों, आपको भी खबर किया जा रहा है कि इस साल मिलन स्विमर फेस्टिवल द ईर्स्ट एंड द ग्रोस्ट मिलन, जहां पर हर एक आते हैं, होने वाले हैं 21, 22 एंड 23 अगस्त साउथ पार्क देन हाग शहर के अंदर में, जहां पर बहुत से क्रांपियस खाने पीने के लिए हर एक सामान रहेंगे, क्रांपियस रहेंगे, जहां पर इंफॉर्मेशन भी आपको दिया जाएगी, तरह तरह की इंफॉर्मेशन भी। तो हर एक को खबर किया जा रहा है, जब भी आप एक क्रांप एक्सटेंड भाड़ा पर लेना चाहेंगे तो जरूर मिलन स्विमर फेस्टिवल .nl वेबसाइट पर आप जाइए। ऐसा नोक बेपेरक आंताल क्रांपियस तहुर दुस वेस एर स्नेल बै। और अपना टिकट के लिए भी इसी वेबसाइट पर आप जाइए, मिलन स्विमर फेस्टिवल .nl द ईर्स्ट द ग्रोस्ट मिलन स्विमर फेस्टिवल। मिलन जो होता है हॉलैंडीज के अंदर में, और वो भी सालों से। अगर आपको इस साल मिलन में जाना है, दन किशे फॉर द ग्रोस्ट एंड दैट इज इन देन हाग साउथ पार्क, जहां पर हर एक आते हैं। चले प्रोग्राम में, गाना जो पेश होगा, और फिर से हम आपको ले चलते हैं और रोटरडम शहर की ओर, और वहां पर हर वक्त हमारा प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, और खासतौर पर पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम, और मुकेश जी की आवाज में एक गाना सुनना चाहते हैं, आनंद फिल्म का गीत। बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

माइटी मुकेश की आवाज में फिल्म आनंद का गीत पेश की गई और खासतौर पर रोटरडम शहर से तार किया है हरोल्ड और हरोल्ड ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। 030-262-6611 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर भी होता है। मौसम आज का खूबसूरत सुहाना मौसम है लेकिन सुनने वालों आने वाली सप्ताह कहीं कहीं टेम्परेचर 30 डिग्री देर तक खराब होने वाले है। गर्मी सा मौसम

अब की बार गाना लता जी की आवाज में पेश होगा। हम आपको ले चलेंगे काफी पुरानी फिल्म छलिया की ओर, 1960 का फिल्म। अब की बार गाना लता जी की आवाज में पेश होगा। हम आपको ले चलेंगे काफी पुरानी फिल्म छलिया की ओर, 1960 का फिल्म, 1960 का फिल्म।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में घड़ी की ओर देखा जाए इस वक्त सरहे 10:00 प्रोग्राम में 5 मिनट वेटेड हो चुका है। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। शुक्रवार का दिन है और इस प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार एक गाना पेश किया जा रहा है और गाना को मांग कर दे वाला है उत्तराखंड शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर एक गाना मांग किया है मोहम्मद रफी की आवाज में। मिस बॉम्बे फिल्म का गीत बस पेश किया जा रहा है।

का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मोहम्मद रफी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई उत्तराखंड शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर का खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

1957 का फिल्म है। उसी फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज में एक बड़ी ही खूबसूरत गाना लाया गया है और गाना को मांग करने वाला है डेलफ खाओ का रहने वाला, डेलफ खाओ शहर का रहने वाला शांति प्रकाश। शांति प्रकाश ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है खुद अपने लिए और सभी सुनने वालों के लिए। तो चले मिलकर मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना को सुनते हैं।

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई फिल्म एक साल, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना। और दैलफ खाओ शहर का रहने वाला शांति प्रकाश ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया आप सभी सुनने वालों के लिए और खुद अपने लिए। भाई शांति प्रकाश आपके तार के लिए लाख लाख धन्यवाद, खुद बातें हुए हैं बस शुक्रिया धन्यवाद आपके तार के लिए। और एक शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है अभी से शुभ वीकेंड के साथ। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम सुनने वालों आहिस्ता आहिस्ता खत्म समाप्त होने पर आ रहा है। चले अपनी बार गाना जो पेश होगा एडो फिल्म मदारी, मुकेश और लता जी की आवाज में गाना को आप सुनते ही रहना। और रोटरडम नॉर्थ की रहने वाली शीला की ये मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, मदारी फिल्म का नाम।

अकबरी ही खूबसूरत गाना मुकेश और लता जी की आवाज में पेश की गई मदारी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, दिल लूटने वाले जादूगर। रोटरडम नॉर्थ की रहने वाली शीला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हर एक कामों काज के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0352 65 65 60। विवाह शादी सालगिरह जन्मदिन बेटी बेटा का मुंडन संस्कार है, फरमाइश से आपको देना है इस महंगाई की जमाना में सस्ती दामों में, तो रेडियो SBS की जरिए आपकी फरमाइश सिर्फ 5 यूरो पर फरमाइश बस पेश किया जा रहा है। 15 यूरो मार 5 यूरो पर फरमाइश, तो मतलब होते हैं 1 घंटा आप फरमाइश देंगे तो 50 यूरो सिर्फ आपको भरना पड़ेगा। और खरातस में डाउनलोड लिंक भी आपकी मेल में भेजा जाएगी। ये तमाम सर्विस आपको दिया जा रहा है सिर्फ रेडियो SBS की जरिए। हर एक इंफॉर्मेशन जरूर आप तार द्वारा, मेल द्वारा या तो रेडियो SBS का ऐप की जरिए आप जरूर लीजिए। न सिर्फ फरमाइश से लेकिन आपकी खबरें, आपकी रिक्लाम हुआ ये भी सस्ती दामों में बस पेश किया जा रहा है। जरूर रेडियो SBS से आप कॉन्टेक्ट कीजिए। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म समाप्त होने पर आ रहा है। आमस्टरडम शहर के अंदर में सालों से हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं आंद्रे आमस्टरडम शहर के अंदर में सालों से हमारा रेडियो SBS का प्रोग्राम बस सुनते हैं। और आज की प्रोग्राम में फिल्म कश्मीर की कली उसी फिल्म का एक गाना मांग किया है और एक आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जाएगी। तो चले मिलकर सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। आमस्टरडम शहर का रहने वाला आंद्रे का मांगी हुई गाना।

आम्स्टरडम शहर से आंद्रे का खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। इसी तरह से एक आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी जो टार किया है ऐप किया है सभी को शुक्रिया धन्यवाद। और इसी तरह से प्रोग्राम में हमेशा हिस्सा लेते ही रहना।

0: शनिवार है, कल सुबह 9 बजे से फिर पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Voel de muziek.

गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में सोनू निगम और अलका की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो भीट है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले अलका एन शान की आवाज में द फिल्म खुशी ये गाना पेश किया जा रहा है तेरे बिना

0: पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

आवास में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आपकी सेवा में पेश किया जाए।

गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार नीरज श्रीधर एंड सुनिधि चौहान के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

Radio SBS की जरिए। ये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की आवाज में। गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गए सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में शान और सुनिधि चौहान होगा प्रोग्राम में।

और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई। कुमार सानू और अनुराधा पोटवाल प्रोग्राम में अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले कुमार सानू जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

अनु जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आश्रम में थे। गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। अतीफ असलम की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि गाना अतीफ असलम की आवाज में आपने सुना और बेहद पसंद किया है। विनोद राठौर एंड साधना सरगम प्रोग्राम में

अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में गाना सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

रेडियो एस बी एस के जरिए किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा। उम्मीद है किशोर कुमार के आवाज में ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो एस बी एस के जरिए जो पेश की गई मोहम्मद रफी की आवाज में ये

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आसरो मीठे गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है और रेडियो SBS की जरिए जो सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। इसी तार की नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। लता के बाद मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

गाना बस पे इसकी गई है। अब की बार मुकेश जी की आवाज में फिल्म कहानी किस्मत की है। उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है द माइटी मुकेश की आवाज में।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था कहानी किस्मत की। चलिए आशा जी की आवाज में अब की बार ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। आज की इस पुरानी नखमे की खास प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में ये गाना आप सुनते ही रहना।

द नाइटिंगेल ऑफ एशिया आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों हर एक कामों काज के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 030-2565-6060। चले प्रोग्राम में किशोर एंड लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। आई द फिल्म कर्स 1980 का फिल्म 1980 का खास फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। मुकेश एंड लता अब की बार प्रोग्राम में ये शमा ये खुशी बोलो जी मुकेश और लता जी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है।

ये शब है ये खुशी, बोलो जी मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी नखमे पुरानी फिल्मी गाने आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। चलिए प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। सभी हिट गाने सभी हिट सॉन्ग्स इसी रेडियो स्टेशन की जरिए हमेशा पेश किया जा रहा है संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS।

आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। ये तोहफा तुम्हारे प्यार का, आशा जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए है। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार होगा, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। सॉन्ग बाय किशोर कुमार।

0: किशोर कुमार की आवाज में गाना पेश की गए गोरी ओ गोरी। सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl है। किशोर कुमार के बाद मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।
1: खुद ही इन गहरी घटाओं से बरस पड़ती है शबनम आप ही ठंडी फिजाओं से। जा जा
2: अरे जा जा
3: जा जा

बदल कर भेष परवाने का क्षमा झिल मिलाती है नशीली शाम के पर्दे में सुबह मुस्कुराती है वो शोला हो के चिंगारी मचल कर नाच जाती है तो धड़कते दिल से मेरे मद भरी आवाज आती है ए, ए, ए, ए, जा जा अरे जा जा जा जा जा रे जा

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352 65 65 60। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशली क्रमलाल दी उफा हार्ट वेलकम हीट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। विल तू रिएक्शन कर दो टेड सर्फ नाद वेबसाइट www.radiosbs.nl ऑफ बेल नाद स्टूडियो मेट 032-62-66-11। Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag. En dat is...

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है।

फिल्म प्यार तो होना ही था से आपने सुना कुमार सानू की आवाज़ में, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है जगजीत सिंह की आवाज़ में, फिल्म तुम बिन से आप सुनिए, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे।

0: दिल के किसी कोने में छू लिया है किसी ने तुम्हें।
1: तुम यहां क्या कर रहे हो?
0: बस देख रहा हूं।
1: क्या चाहते हो?
0: मेरे सिवा कोई यह चेहरा कभी ना देखे। मैं उम्र गुजार दूं इन आंखों में।

ऐ दिल इतना बता दे, बेहतरीन गाना आपने सुना हरिहरन की आवाज़ में फिल्म दीवाने से। अगला गाना प्रोग्राम की तुम के लहर में है रूही से, सचिन जिगर और मिक्का सिंह की आवाज़ में आप सुनिए भूतनी।

फिल्म फिजा से आपने सुना अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में आ जमा हिया, और अब आप सुनिए जस मानक की आवाज में फिल्म सरदार का ग्रैंडसन से जीने करदा।

हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया इज द टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म हम तुम पे मरते हैं, खुशहुदूर लता मंगेशकर एंड उदित नारायण। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई इस द फिल्म चल मेरे भाई एंड इस खुशहुदूर अलका याचिक एंड अभिजीत। चल मेरे भाई इज अ फिल्म फन संजय दत्त, करिश्मा कपूर एंड सलमान खान। चोरी चोरी इज इट फोन लीजिए इन इत प्रोग्राम गीतों के लहर फिया रेडियो SBS।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, ये चाहे द फिल्म अभिमान है हंसा हुंदर लता मंगेशकर। हाउ द फेदर मेट अ द फिल्म बॉम्बे, कहना ही क्या ये नैनिक अनजान से जो मिले।

सुन मेरे हम सफर, क्या तुझको इतनी सी भी है खबर इस सॉन्ग दूर अखिल सचदेव एंड कॉम आयो द फिल्म बद्री की दुल्हनिया। आयो द फिल्म मैंने दिल तुझको दिया, कॉम को सॉन्ग दूर सोनू निगम एस सुनिधि चौहान मैंने दिल तुझको दिया। इन प्रोग्राम गीतों के लहर फिया रेडियो SBS।

चुरा के दिल मेरा गुड़िया चली इस किस्म उधर बैनी दियाल अनमोल मलिक एंड अनु मलिक दे सकेर अत क्वाम आउट द फिल्म हंगामा 2 हाँ उधर फर्दर में हमेशा तेरे साथ रहूँगा आउट द फिल्म कृष्णा कॉटेज किस्म उधर कमाल खान

चरहादे रंग आपने सुना फिल्म यमला पगला दीवाना से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है कोई मिल गया से, ऋतिक रोशन का फिल्म है। गाने के बोल है, इट्स मैजिक आई हैव गॉट द वाइब दैट यू नीड।

बाकी सब फर्स्ट क्लास है। आपने सुना अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में फिल्म कलंक से, और अब आप सुनिए फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। उदित नारायण और अलका याचिक की आवाज में आप सुनिए चांद छुपा बादल में।

कुछ तो है फिल्म का नाम, और अब आप सुनिए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा से, अर्जुन सुखविंदर सिंह और पैरी की आवाज में, हाउस पार्टी सॉन्ग।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।